0: AI Tropology Lab के व्यापक कंटेंट इकोसिस्टम के इस नए और बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गंभीर विषय की गहराई में जाने वाले हैं। आज चर्चा का केंद्र है एक शानदार लेख जिसका शीर्षक है खुला होना साझा होना नहीं है।
1: बिल्कुल, और देखिए विषय सुनने में जितना सीधा लगता है इसके मायने उतने ही गहरे हैं। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कल्पना कीजिए सितंबर 2026 की और दृश्य है नई दिल्ली में चल रहा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ग्लोबल साउथ में ओपन एआई को लेकर वहां जो कुछ भी हुआ उसने वैश्विक भू राजनीति की पूरी बिसात को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया है।
0: इस पूरे एक्सप्लेनर का जो मूल आधार है वो इस एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर टिका है, खुला होना साझा होना नहीं है और साझा होना जरूरी नहीं कि संप्रभुता हो।
2: एकदम सही कहा। ये एक ऐसा वाक्य है जो तकनीकी दुनिया के एक बहुत बड़े और पुराने भ्रम को सीधे चुनौती देता है। असल में जब भी किसी तकनीक पर ओपन का ठप्पा लग जाता है तो हम तुरंत मान लेते हैं कि भाई इस पर तो सबका समान अधिकार है, लेकिन जब बात बड़े स्तर पर यानी जियोपॉलिटिक्स की होती है तो इस ओपन एआई का असल मतलब क्या होता है ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
0: तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले खंड की ओर, ब्रिक्स 2026 प्रस्ताव और वास्तविकता। नई दिल्ली के उस मंच पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिले। एक तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक बहुत ही विशिष्ट प्रस्ताव था। उन्होंने ग्लोबल साउथ की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक साझा ओपन एआई इकोसिस्टम का प्रस्ताव रखा। ध्यान दीजिए, ये महज कोई ऊपरी विचार नहीं था बल्कि एक पूरी वास्तुकला या आर्किटेक्चर खड़ा करने की बात थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र की जो जमीनी हकीकत सामने आई वो कहीं अधिक सतर्क और नपीतुली थी। ब्रिक्स गठबंधन ने इस ओपन जोन वाले बड़े आर्किटेक्चर को एक साझा परियोजना के रूप में नहीं अपनाया। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ एआई संसाधनों को सुरक्षित, सुलभ और समावेशी बनाने की एक बहुत ही सामान्य सी दिशा पर सहमति जताई। यानी एक तरफ तो पूरा बना बनाया ढांचा देने की पेशकश थी, लेकिन गठबंधन ने काफी सूझबूझ के साथ फिलहाल केवल एक दिशा चुनना ही बेहतर समझा। अब आते हैं दूसरे खंड पर, खुलापन बनाम साझा क्षमता।
3: देखिए, एआई की दुनिया में ओपन सोर्स और ओपन वेट्स के बीच का जो बुनियादी फर्क है ना, उसे समझना इस पूरी चर्चा की जान है। ओपन सोर्स इनिशिएटिव की परिभाषा बिल्कुल साफ है। किसी एआई को सच में खुला तभी माना जाएगा जब उसका कोड, जिस डेटा पर उसे ट्रेन किया गया है, वो डेटा और उसके वेट्स, ये सब कुछ पूरी तरह से उपलब्ध हो ताकि कोई भी उसे समझ सके, उसमें बदलाव कर सके। और दूसरी तरफ है ये ओपन वेट्स का कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि मॉडल के पैरामीटर्स तो सार्वजनिक कर दिए गए हैं, अब कोई भी इस मॉडल को डाउनलोड तो कर ही सकता है, लेकिन पेच ये है कि इसे चलाने के लिए बाहरी हार्डवेयर पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। तो लब्बुलुआब ये है कि किसी मॉडल को डाउनलोड करने की एक्सेस मिल जाना उस मॉडल को स्वतंत्र रूप से बनाने या चलाने की क्षमता मिल जाने के बराबर बिल्कुल नहीं है।
0: जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 104 बिलियन। ये मूनशॉट के किमी K3 मॉडल के पैरामीटर्स की विशाल संख्या है। अब तकनीकी रूप से देखें तो ये मॉडल डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, कोई भी इसे हासिल कर सकता है।
4: जी हाँ, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। इतने भारी भरकम मॉडल को वास्तव में बड़े पैमाने पर चलाने के लिए कम से कम 64 एक्सीलरेटर या कहें कि अत्यंत महंगे और दुर्लभ हार्डवेयर की जरूरत होती है। तो बात वहीं आ जाती है कि भले ही मॉडल कागजों पर ओपन है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की जो असली भौतिक क्षमता है वो आज भी दुनिया के कुछ गिने चुने हिस्सों में ही सिमटी हुई है।
0: इसी बात से हम अपने तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं, एआई की भौतिक अवसंरचना। इस भौतिक वास्तविकता को थोड़ी और गहराई से समझने के लिए हम स्टार और रू लेडर के एक बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत का सहारा ले सकते हैं। उनका साफ मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब केवल तारों का जाल, सर्वर या कुछ भौतिक वस्तुएं भर नहीं है।
5: बिल्कुल सही, ये असल में संबंध परक व्यवस्थाओं, मानकों और पूरे के पूरे समुदायों में गहराई से गुंथा हुआ एक नेटवर्क है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो चीज एक विकसित देश के लिए बिल्कुल अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह सुचारू रूप से काम कर रही है, वही चीज किसी विकासशील देश के लिए आवश्यकताओं, निर्भरताओं और दुर्गम बाधाओं की एक बहुत बड़ी दीवार बन सकती है।
0: और जब हम इन भौतिक सीमाओं की बात करते हैं तो इसमें कई चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि कंप्यूट पावर, माइक्रोचिप्स, बड़े बड़े डेटा सेंटर, सुचारू बिजली की ग्रिड, भाषाई संसाधन और जाहिर है तकनीकी ज्ञान।
6: जरा सोचिए, एक बहुत ही बेहतरीन ओपन मॉडल डाउनलोड कर भी लिया, लेकिन वो तब तक पूरी तरह से बेकार है जब तक उसे चलाने के लिए 24 घंटे बिजली ना हो, इंपोर्ट किए गए एडवांस चिप्स ना हो और डेटा को प्रोसेस करने वाले लोकल डेटा सेंटर मौजूद ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर का कोड नहीं है, बल्कि यह पूरी की पूरी भौतिक और संस्थागत सप्लाई चेन है। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये क्षमता सिर्फ ओपन वेट्स दे देने से कभी भी अपने आप ट्रांसफर नहीं हो जाती।
0: अब रुख करते हैं चौथे खंड की ओर, भारत और चीन का समीकरण।
5: यहाँ ग्लोबल साउथ के अंदर ही संस्थागत प्रतिस्पर्धा और सहयोग का एक बहुत ही जटिल ताना बाना मौजूद है। एक तरफ अगर हम देखें तो चीन की WAICO यानी वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पहल है, जिसकी शुरुआत शंघाई से हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ भारत की अपनी बिल्कुल अलग और विशिष्ट नीतियां हैं, जैसे कि नई दिल्ली का AI इम्पैक्ट समिट और आत्मनिर्भर भारत के तहत तकनीकी स्वायत्तता की नीतियां। दिलचस्प बात क्या है पता है? भारत WAICO के संस्थापक देशों की सूची में नहीं है। ये इस बात का एक बड़ा संकेत है कि भारत ब्रिक्स का उपयोग एक बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर दुनिया बनाने की अपनी व्यापक रणनीति के तहत कर रहा है। वो अपनी तकनीकी प्रगति के लिए केवल ब्रिक्स या चीन के बनाए ढांचों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। तो यहाँ हमें संस्थागत जगहों पर सहयोग का ओवरलैप भी दिखता है और एक बहुत ही स्पष्ट रणनीतिक दूरी भी।
0: ये हमें पांचवें खंड पर लाता है, डेटा सेट में संस्कृति और ज्ञान। देखिए, ब्रिक्स घोषणा पत्र में एक अत्यंत गंभीर जोखिम की तरफ इशारा किया गया है, और वो है AI डेटा सेट में सांस्कृतिक ज्ञान और विरासत का गलत प्रतिनिधित्व या उसका दुरुपयोग होना। ये बहुत ही अहम बिंदु है, क्योंकि संप्रभुता का मतलब सिर्फ ये गिनना नहीं है कि किसी देश में कितने चिप्स हैं या कितने बड़े डेटा सेंटर्स हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो AI सिस्टम असल में जानता क्या है, वो किसी राष्ट्र की संस्कृति को कैसे दिखा रहा है, और क्या वो ग्लोबल साउथ के बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान को पूरी तरह से अनदेखा तो नहीं कर रहा। अगर इन AI प्रणालियों के ज्ञान और प्रतिनिधित्व पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो सच मानिए ये भी एक प्रकार की तकनीकी गुलामी या अधीनता ही है।
5: और अब हम इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण और छठे खंड पर पहुंच गए हैं, तकनीकी संप्रभुता और बाहर निकलने यानी एग्जिट का विकल्प।
0: तो अब तक की चर्चा के बाद ये बड़ा सवाल उभरकर सामने आता है, अगर सच्ची तकनीकी संप्रभुता केवल ओपन मॉडल तक पहुंच या एक्सेस होने तक सीमित नहीं है, तो फिर असल में वह है क्या? ये सवाल पूरे लेख का सार समेटे हुए हैं। वास्तविक स्वायत्तता का मतलब है एक ऐसी संस्थागत शक्ति होना जिसके जरिए आप AI सिस्टम को अपनी शर्तों पर ऑडिट कर सकें, उसे स्थानीय स्तर पर होस्ट कर सकें और अपनी जरूरतों के हिसाब से उसे रेगुलेट कर सकें। किसी चीज का महज इस्तेमाल कर पाना स्वायत्तता नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर पाना स्वायत्तता है।
3: जो हमें इस चर्चा के अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष की ओर ले जाता है। एक बार इस कोट को ध्यान से सुनिए। संप्रभुता किसी अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ सकने की शक्ति है बिना उस पर निर्मित सब कुछ खोए।
4: क्या कमाल का विचार है! ये इस बात का एक बहुत ही गहरा उदाहरण है कि महज पहुंच होना ही सब कुछ नहीं होता। सच्ची संप्रभुता तब होती है जब ये चुनने की पूरी आजादी हो कि किसी तकनीक या नेटवर्क से कब बाहर निकला जा सकता है, और वो भी अपना सारा डेटा सिस्टम और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए।
3: बिल्कुल। तो अंत में यह समझना बेहद जरूरी है कि खुला होना अपने आप में साझा होना नहीं है, और महज साझा होना अपने आप तकनीकी संप्रभुता की गारंटी नहीं देता। असली ताकत उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पैदा करने, उस पर अपना स्थानीय नियंत्रण रखने, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर जरूरत पड़े तो बिना डरे उससे बाहर निकल पाने की क्षमता में है। क्या हम वाकई आज की तारीख में इतने स्वतंत्र हैं? इसी शक्तिशाली और विचारोत्तेजक सवाल के साथ AI एंथ्रोपोलॉजी लैब के इस गहन विश्लेषण पर हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं संपन्न होता है। ज्ञान, तकनीक और पावर के इस जटिल समीकरण पर विचार करते रहिए।
7: Abrimos otra conversación. Ideas, culturas y tecnologías para pensar la inteligencia artificial desde la vida social. Estás en Aditrapology Lab. Defende y seguimos pensando.
8: Desde AI Anthropology Lab os traemos hoy una lectura situada de, bueno, la inteligencia artificial y su capacidad para interpretar el patrimonio cultural. Porque, a ver, imagina por un momento esta escena. Le muestras a un sistema de inteligencia artificial la fotografía de una antigua puerta ceremonial de madera. Y en cuestión de milisegundos, pues la máquina procesa la imagen, te da las coordenadas exactas en un mapa, identifica el tipo de ensamblaje arquitectónico y hasta te dice a qué dinastía pertenece.
9: Claro, sobre el papel parece magia.
8: Exacto. Parece que la máquina realmente sabe lo que está viendo. Pero la pregunta que vamos a desgranar hoy, el verdadero hilo del que queremos tirar, es otra. ¿Equivale recuperar todos esos datos técnicos a comprender de verdad una cultura?
6: Pues es que ahí está el nudo de la cuestión, la verdad. Las narrativas tecnológicas actuales nos venden constantemente que procesar información visual a gran escala es, bueno, es sinónimo de comprensión profunda.
8: Ya.
6: Pero desde la economía política y desde el análisis de las infraestructuras, la perspectiva cambia radicalmente. La pregunta clave que vamos a abordar hoy no es solamente qué logra identificar la máquina en esa fotografía.
8: Sino algo estructural.
6: Eso es. Algo mucho más estructural. ¿Quién diseña las reglas con las que esa máquina mira? Tenemos que preguntarnos quién categoriza el conocimiento y, sobre todo, qué condiciones sociales o políticas deciden que cuenta como comprensión cultural.
8: Porque la visión artificial nunca opera en un vacío.
6: Nunca. Jamás.
8: Pues para bajar todo esto a la tierra, vamos a analizar un caso sumamente específico y de verdad muy revelador. Se trata del proyecto Chinaerita Kua.
6: Uh-huh.
8: Es lo que en el sector tecnológico llaman un benchmark, ¿no? Un conjunto de evaluación diseñado expresamente para poner a prueba los grandes modelos de visión y lenguaje.
6: Sí, para ver hasta dónde llegan.
8: Exacto. Y este en concreto se centra en los bienes del patrimonio mundial en China. Los números del proyecto, la verdad es que imponen. Reúne 2.279 imágenes.
6: ¿Qué se dice pronto?
8: Ya te digo. Pero fíjate en el detalle. No son fotos de un archivo aséptico de museo, ¿eh? Sino imágenes extraídas de publicaciones reales de la red social Sina Weibo.
6: Y un apunte importantísimo sobre eso. El hecho de usar una plataforma como Weibo, que para quienes nos escuchan, vendría a ser un equivalente a X o a Instagram, pues ya sitúa toda esta base de datos en el terreno de lo cotidiano.
8: Claro.
6: Estamos hablando de la circulación digital de imágenes hechas por personas en su día a día. No son planimetrías académicas ni fotos de estudio.
8: Son fotos que hace la gente. Y a partir de ese material, el equipo de investigación estructuró nada menos que 14.133 preguntas, bilingües.
6: Wow.
8: Tanto en chino como en inglés, ¿eh? Todo sobre 51 sitios inscritos por la UNESCO en China. Y ojo, las preguntas no son de sí o no.
6: No, no, van mucho más allá.
8: Abarcan 7 dimensiones distintas. Empiezan por cosas muy básicas. A ver, como pedirle a la máquina que identifique el lugar. Pero luego la dificultad se dispara. Le exigen a la IA que asocie esa imagen a un contexto histórico concreto, que infiera qué función social tenía ese edificio en su época, o que analice elementos arquitectónicos muy finos.
6: Y aquí, justo aquí, es donde los resultados del estudio rompen un poco el mito este de la máquina omnisciente. Los datos, de hecho, evidencian unos límites clarísimos.
8: Ya lo creo.
6: Los modelos actuales, incluso los más avanzados que tenemos hoy, funcionan de manera muy solvente cuando la tarea es puramente espacial.
8: O sea, reconocer bordes y demás.
6: Exacto. Reconocer bordes, formas, texturas en una imagen. Sin embargo, se desploman por completo cuando la tarea exige cruzar esa imagen con una dimensión temporal o social.
8: Claro, ahí pinchan.
6: Para dar el dato preciso que aporta el documento, en la prueba específica de periodización histórica, el mejor sistema evaluado apenas logró un 64,42% de acierto.
8: A ver, un 64% en un examen de opción múltiple no es precisamente brillante.
6: Desde luego que no.
8: Es como, no sé, sí, es como intentar comprender la complejidad de una revuelta histórica basándose únicamente en la capacidad de identificar el tipo de tela que llevaban en las banderas, ¿verdad?
6: Es una analogía perfecta.
8: El hallazgo principal de este documento no es un ataque gratuito para decir, oh, la inteligencia artificial es inútil. No es eso.
6: No, para nada.
8: Lo que nos señala es que recuperar un patrón visual, por muy sofisticado que sea el cálculo computacional, pues no es lo mismo que comprender un patrimonio situado.
6: Claro. Y para entender por qué ocurre esto, hay que mirar el mecanismo tecnológico por dentro. Un modelo de visión artificial busca relaciones estadísticas entre píxeles. El problema es que el sentido histórico de un lugar no tiene un color determinado, ni una forma geométrica concreta. La máquina puede detectar, pues no sé, la curvatura de un tejado. Pero en esa curvatura no están inscritos los 3 siglos de conflictos, los cambios de uso o las disputas comunitarias que le dan su significado real a ese templo.
8: Totalmente.
6: La comprensión requiere un contexto relacional que, sencillamente, no se puede fotografiar.
8: Vale, entiendo esa limitación técnica. Pero vayamos un paso más allá. Porque si la inteligencia artificial saca mala nota en esta interpretación profunda, pues a lo mejor el problema no está solo en el modelo, sino en el examen en sí.
6: Ahí le has dado.
8: Es que me cuesta creer que un test como Chinnery-Tucker-Weigh sea un terreno completamente neutral. ¿Quién diseña la regla de evaluación? ¿Quién decide qué respuestas son las correctas?
6: Es que has tocado el punto crítico de las infraestructuras de datos. Ningún test es neutral. Antes de que un modelo de IA responda a la primera pregunta, el propio instrumento de evaluación ya ha acotado qué tipo de conocimiento es válido y cuál no.
8: Claro.
9: En este caso, la construcción de este benchmark se basa en una ontología patrimonial, que, para aclararlo, es básicamente la forma en la que decidimos ordenar y clasificar el mundo. Y está estrictamente alineada con la UNESCO. Utilizan descripciones que mezclan artículos de Wikipedia con los criterios oficiales de selección de esta institución.
8: Espera un momento, porque leyendo el documento hay un detalle sobre la creación de este examen que sinceramente me dejó descolocada.
9: A ver.
8: No intervienen otras inteligencias artificiales en el propio diseño de las preguntas.
9: Así es. Sí, sí. Y esto revela muchísimo sobre cómo se está construyendo el conocimiento ahora mismo. La infraestructura que evalúa a la IA fue construida, en gran parte, por otra IA.
8: Es tremendo.
9: El equipo de investigación ha utilizado GPT-4 o para estructurar los atributos de ese patrimonio y para generar el volumen enorme de preguntas. Es cierto que hubo revisión humana, por supuesto, pero el armazón es sintético.
8: Ya.
9: Y además declaran haber usado Claude, que es otro modelo de lenguaje, para mejorar la claridad del manuscrito.
8: O sea, estamos ante una inteligencia artificial que redacta el examen con el que vamos a decidir si otra inteligencia artificial entiende o no la cultura humana.
9: Suena a bucle, ¿verdad?
8: Suena a cámara de eco absoluta. Y si a esto le sumamos las instituciones que firman el trabajo, pues la cosa se complica aún más. Porque hablamos de entidades como la LMU de Múnich, la FAU Erhangeland-Nuremberg, la Universidad de Tubinga, bueno, y la Universidad de Copenhague.
9: Sí, todas europeas.
8: Y la de Maryland en Estados Unidos, junto con la Universidad Sun Yat-sen en China.
6: Pues detengámonos un momento en esa geopolítica de los datos, porque es fundamental. No se trata de dudar del rigor del equipo de investigación. El trabajo técnico, hay que decirlo, es exhaustivo.
8: Por supuesto.
6: Pero hay que señalar la estructura de poder que subyace. Tenemos un estudio sobre el patrimonio chino evaluado bajo las categorías estandarizadas de la UNESCO y validado por un circuito académico que es predominantemente europeo y estadounidense.
8: Claro. La balanza está muy clara.
6: En la práctica, este tipo de infraestructuras participa activamente en definir a nivel global qué cuenta como una interpretación cultural válida. De hecho, el propio documento lo admite.
8: Sí, son transparentes en eso.
6: Reconocen que este marco corre el riesgo de dejar fuera aquellas narrativas locales que están en disputa o que simplemente operan fuera de los radares formales de la UNESCO.
8: Y sobre esa idea del